जाइए प्रभु कह दा आन ना भी आ तेरी समसर तेरे बिना होर कोई सुझदा नहीं क्योंकि होर किने बा फड़नी है जिदे नाल प्रीता पाइया ए प्रीता कुड़ियां हो गईया ए निरंकार तेरे चरणा दी प्रीत सच्ची है सारे दरगाह के तेरी चरणा विच पुजे हां इस लई नानक अवर न सुजई हर बिन बख्शन हार तू बख्शिंद है तू बख्शिशां दा सागर है जे मेरे पापां दे दो चार बेड़े डुब भी गए सागर नूं की फर्क पवेगा।

नानक नाम मेरा प्राण सखाय हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वर पाओ अड़ेरे जन हर हर सरदार प्यास हर हर नाम मिलै तृप्तस मिल संगत गुण प्रयास जन हर हर हर रस नाम न पाया हे भावहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जन हर जन सतगुर संगत पाए तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संगत जत हर रव पाया मिल जन नानक नाम प्रयास राग गूजरी महला पंजा काहे रे मन चितवें उद्यम

अग्रंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समान एक दाते भारी जी सब तेरे चोज विदान मूं आपे दाता आपे पोता जी हो कुछ दिन अवर न जान मूं पार ब्रह्म बेअंत बेअंती तेरे क्या भया दोखान जो सेव है जो सेव है तुम्हें जन नानक तन कुर्बान।

कति नहीं पड़या, मूर्ख मुर्दा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिनकी शरण, जंतु नाही विसरया, आशा महला पंजा, पही प्राप्त मानुख जहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बढ़िया, अवर का तेरा काम, मेल साध संगत भल केव

सोई गुरु संगिया हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सदर प्रजा जन आप सवारी, शिव कंको शिव गुण सुख दियो, शत्रन गोपल नो बद कियो, घट घट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछानत, कीर्ति जय कुंजर सूला, सपर कृपा कृष्ण कर फूला, संतन दुख पाए ते सुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जाव और करकरा तरतारा, प्रजा तहत तर दे अपारा, जाव आ कर कर दो कबू, तो मैं मृत दे कर सबू, जेते भजन से सब तार, आप अपनी भूत उचार, तुम सभी ते रहती आलम, जांत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीला अनाद असंभ, ताका मूल उचार देता, जाको फिर न पाओ देता,

तुमरा लहन जाए पसारा एक दुसया कथन संसार एक रूपा अनूप स्वरूपा अनंत भयो राव कही कुप्पा अंडज जेरज सेतर की पुत पुरखान बहुर रखती कहूँ भूल राजा होए बैठा कहूँ सुमत भयो शंकर कैठा सगरी से दखाए अचम भव आद जुदाद स्वरूप स्वं भव अब चा मेरी तुम करो सिख उबार आशिक संघरो दुष्ट जिते उद्वत उत्पत्ता सकल मलेश करो रंग धत्ता ये अस्त हो गया तब शरणी परे जन के दुष्ट दुष्ट हो मरे गुरख जवन पर परे तिहारे जन के तुम संकट सवतारे जो कल को एक बार त्यय है ताके काल नित में है रचा होए ताए संकला

एक बारा जिनको मैं संभारा आल्फा से तय उबारा जिन नारा नाम तिहारों का दार्ग दुष्ट डोबते रहा खड़ केता मैं शरण से आरी आपा दैले उबारी सर्व ठोर न हो सहाई दुष्ट डोबते ले उपचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभरता केलवे सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन को क्षय करता श्री अस्पोजा जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वांछता फल पावे कोई भूख न से व्यापत कोई अड़ल सुने गो जो जाए थोड़क न पावे सुने मूर्ख चलाए चतुर पायावे मूर्ख दर्द पहो नित्य न जन्नर के रहे वो जो जाती एक बार चौबई को कह चौबई संबत सत्रह सहज अर्थ सहसा पुरतून खिंच भाद्र सुधी अठवीं रविवार तीर्थ सुद्र ग्रंथ सुधारा ऐसा श्री चरित्रो पखयाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुख मस्त दोहरा दा जान कर दास पर तुझे कृपा पार आप बैराख मोए मान क्रम वचन विचार चौबई नैना गलेश प्रथम नाऊ किशन विशन कमू न क्याऊ कान सुने पहचान तिनसो जब लाची लोरी पल इनसो महाकाल रखवा

पुत्रीय जुम जुम शत्रे मरिय जग में गौ चल राखाप मोहे और न दल तुम करो सदा पुपारा तुम साहेब में दास्यारा।

राजान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो पारा तुम साहेबा में किंकर धारा जा जान दयास पुकारो अमृता बैरियन सुंगारो प्रथमा करो भगवत को ध्याना मोर करो कविता बेदाना कृष्ण जता माता चरित्र उचारो रूप होए कब ले सुधारो कब वाचा दोहरा जो निज प्रभु सुनता सो कहो जगमाए जो ते प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाए दोहरा हर हरचन दोए एक है देव चार कशनाए जलते उपज तरंग दियो जल ही दिखे समाए दोहरा जब आय सो प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप से सबू कह सुनाए कब आजा दोहरा छाट भयो में जोड़ कर वचन का सन्याय पंत चला तब जंत जब तुम करो सहाय तब ते को अंतरे नहीं राम रीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न माने स्मृत शास्त्र देख सवे बहुत कहे हम एक न जाने श्री स्पान कृपा तुम्हरी कर

अर्नाडों तू मन मेरे तू सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सोचो मनो विसारे कै नंक मन मेरे सलर और नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते है कर्तों तेरे सब शह जिस देश हो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शंत लेरे कै नान सचे साहेब क्या नहीं करते है साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुकरा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसे जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु बिटो जसियां ए वड़े आईया कै नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचावद तरस भागै तरस भागै शब्द वाजे करा जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल संकट मारिया घोर कर्म पा तुम जिनको से नाम हर कै लागे ऐ नानक तै सुख होआ तित घर अनहद वाजे मुंदावनी महला पंजवां ਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਾਧਾਰੋ ਏ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਜਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, बई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके जिते मैं

वो तेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे। पहचानेगा किवें, क्योंकि तू भगती नहीं कीती, केवल तप कीता है। पहचानन दा वर नहीं मंगया, पहचानेगा कि

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, ए ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ए नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी।

उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे कर नारायण प्रगट होया है चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे तन गुरु नानक साहब दे कमरे वाल चल पे।

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी पर तू उफ ना कीती। ऐ दाता मैनू बख्श लै। ए कहंदे होए पिता महता कालू। तां गुरु नानक साहब दे

पिता नालू काली एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

अपने घर विच वड्यां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

जिथे दुख विच है गुणवान वे दुखी है, हर विद्वान सुखी ना हो सकया। बीमार ते दुख विच

खुश होना चाहिदा है तैनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है। रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति।

कौन कौन दुखी है। पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आग्याकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार होवे। ए भी तां इक दुख है। अज दा शब्द है नानक दुखिया सब संसार। आप जी ने बहुत बार श्रवण किया शब्द, इहदे विच एक अखर आया बाली। बाली कहिंदे ने इस्त्री नूं, एआणी बाली क्या करे, एआणी बेसमझ। एक राजे दी लड़की सी, परमात्मा ने उहदे लेख ही ऐसे लिखे, उहदे संजोगां दे विच कोई लड़का नहीं सी। उहदे कर्म ही ऐसे सन कि उहदी जिंदगी विच कदे घर वस ही नहीं सी सकदा। ते सात संगत कितनी नियामत है, कईयां नूं वाहिगुरु घर वसण दा चांस दिंदा है। ओ वाहिगुरु दी दित्ती होई दात नूं घर उजाड़ के रख दिंदे ने। कहिंदे कि ओ जिहड़ी बच्ची सी जदों जवान होई, वर लायक होई, राजे ने उसे मंगनी कीती। बड़े राजिया नूं बुलाया, राजकुमार आए, उस बच्चे दा स्वयंवर रचिया गया। ते सात संगत उहदे कर्मां च इह लिखिया सी कि जिहड़े भी लड़के नाल उहदी मंगनी होएगी, ओ लड़का संसार तों चला जाएगा। मंगनी होई, जदों शादी दा दिन तय कीता गया, बरात तो कुछ दिन पहला वो बच्चा दुनिया तो चला गया। बड़ा दुख होया, राजे दे घर भी बड़ा दुख मनाया गया, इस लड़की ने भी बड़ा दुख मनाया। चलो साल बीतिया, एक बार फिर स्वयंवर हो गया, फिर उस तरह बरात तो चार दिन पहला लड़का फिर दुनिया तो चला गया। इसे तरह राजे ने 12-13 बार लड़की का वर ढूंढिया, ते जेड़ा भी वर ढूंढदा सी ओही ओ दुनिया तो चला जांदा सी। आखिर विच अखां विच हंझू पा

पुत्र पैदा हो गए, अजामल करदा की है, जंगल विच चला जांदा है, जाल लगांदा है, पंछी पकड़दा है, कुछ पंछी मार के सब्जी बना लेंदे ने, कुछ पंछी वेच के आटा दाल ले आंदे, गुजारा करदे। जेड़े पुत्र पैदा हुए ओ भी माड़े कर्म करदे ने, अजामल दा शरीर रोगी हो गया, क्यों के गुरु साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, दुख तदे जा विसर जावे। जदो इंसान परमेश्वर नूं भुला देंदा है, परमेश्वर दा डर मन विचों कढ देंदा है, फिर पाप करदा है, ते जिहड़ा पाप करन वाला है अंत ओ इन्ना दुखी हो जांदा है कि पछताण दा मौका भी नहीं मिलदा। कई वारी अजामल शरीर रोगी हो गया, पुत्र भी पापी निकले, छे पुत जाए वेसवा, उस वेसवा ने छे पुत्रां नूं जन्म दिता, पापां दे फल इच्छे लिया, पाप कीते सन ते पापां दा फल पाप ही मिलिया, अत दे दुखी हो गए ते हुण सोचदे ने, गुरु दा कहना नहीं मन्या, पिता दा कहना नहीं मन्या, ते आप भी दुखी ते औलाद भी

जंगल चला गया। दूसरे पास से कलावती वेसवा जिड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन्हां साधुआं नूं संतां नूं अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ीक करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोढ़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच, चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इनू बाहर रख दे। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्या। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे, कि अज महापुरश साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है

जमगण मारे हरजना गया सुरग जम डंड ना सया। जमगणा नू देवत्या ने हरी दे जना ने पिछा कर दिता। उस पापी अजामल नू बैबान विच बठा के ओ हरी दे जन देवते अजामल नू सचखंड लै गए। जमा दे डंड तू जमा दी मार तू ओ पापी अजामल बच गया। क्यों बच गया? नाए लए दुख डेरा टहया। जेड़ा भी उस परमेश्वर दा नाम लैंदा है ओदे दुख कलेश खत्म हो जांदे ने। बाणी भी इस गल दी गवाही भरदी है अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वांके हृदय वसे।

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली। शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

भाई बहुत मद जो बास बस्त हैं मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो।